0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद ईरान सख्त गिर मौकिफ पर कायम है। ट्रंप मुबैना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शराइत के साथ इसे मनसूख करने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और मशरक वस्ता के दीगर ममालिक ने अमरीका से कहा है कि वो किसी भी ऐसे हमले को रोक दे जो माहदे पर इतफाक के दायरे कार में हो। इस माहदे में अबनाए हुरमस को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान से लाहक जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। ट्रंप ने लिखा कि दरख्वास्त की बुनियाद पर उन्होंने हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि वो तेजी से डील कर सकें। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज एक आला ईरानी दिफाई अहलकार के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन के हालिया बयानात को एक हकीकी और काबिल एतबार खतरे के तौर पर देखता है, चाहे इसे नफसियाती हरबों के तौर पर पेश किया जाए। एहलकार ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ईरान ना तो चौकसी छोड़ेगा ना ही गैर फाल रहेगा। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान अपनी फौजी तैयारी में इजाफा और दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शिमाल मशरकी पानियों में एक कश्ती में आग लग गई। तलाश और बचाव की मुल्की एजेंसी का कहना है कि इतवार की शाम 4 बजे तक 5 अफराद हलाक हो चुके थे और 41 दीगर लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग दिन के अवाइल में उस वक्त लगी जब कश्ती मशरकी जावा सूबे के मादूरा जजीरे के पास से गुजर रही थी। एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कश्ती 271 अफराद को मशरकी जावा के सूरा बाया से जनूबी सलावेसी सूबे के मकासर लेकर जा रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जापान के शिमाली शहर आओमोरी में मौसम गर्मा के मशहूर तरीन मुल्की त्योहारों में से एक के आगाज पर शानदार फ्लोट्स की परेड हुई है। त्योहार में सालाना तकरीबन 10 लाख अफराद शरीक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कशिश नेबुता कहलाने वाले दियोहेकल फ्लोट से वो तारीखी जंगजुओं, अफसानवी शख्सियात और दीगर मौजूआत की अक्कासी करते हैं। इतवार को इस साल के त्योहार के पहले दिन शाम 7 बजे 16 फ्लोट से जुलूस शुरू हुआ। हर फ्लोट की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर थी। शुरका ढोल और बांसुरी बजाते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील रास्ते पर चले। पुरजोश रक्कासों के एक ग्रुप ने माहौल को मजीद पुर रौनक बनाने में मदद दी। 40 के पेटे की एक तमाशाई खातून ने कहा कि वो पहली बार त्योहार देखने पर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो नेबुता कारीगरों की साल भर की कोशिशों में शामिल जोश व खरोश महसूस करती हैं जो फ्लोट्स बनाने के लिए की जाती हैं। त्यौहार जुमे तक जारी रहेगा। शायकीन आखिरी दिन आतिशबाजी और बहरी फ्लोट्स का जुलूस बयक वक्त देख सकते हैं।
1: और अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की वजीर खजाना का कहना है कि वजारत ने अमरीकी वजारत खजाना के साथ मिलकर जापानी येन खरीदने के लिए गुज़श्ता हफ्ते करेंसी मंडी में मुदाखलत की थी। ख्याल किया जाता है कि गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क की तिजारत में डॉलर के मुकाबले में जापानी करेंसी में 5 येन के तेजी से इजाफे के पीछे यही मुश्तरका मुदाखलत कारफरमा है। जनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये प्रीफेक्चर गुज़श्ता हफ्ते 7.1 मैग्नीट्यूड के जलजले से मुतासिर हुआ था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद तेहरान सख्त गिर मौकफ पर कायम है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: きですき बजाय सिर्फ सकी कहा है।
1: अच्छा, वताशी वा भी तो अक्सर हज़्फ कर दिया जाता है, लेकिन आज के मकालमे में ताम और आया का दोनों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसा क्यों है?
0: दोनों ने अपनी अपनी पसंद का इजहार किया है जो दूसरों से और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन ताम ने अपने जुमले वताशी वा कोनो नेको गा स्की दिस में वाज तौर पर वताशी वा का इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से अपनी बात पर जोर देने के लिए है, यानी दूसरों की पसंद तो अलग हो सकती है मगर मुझे ये बिल्ली पसंद है।
1: तो सामेईन, ये जुमला तीन मुख्तलिफ अंदाज में सुनिए और दोहराइए।
2: स्की देस, कोनो नेको गा स्की देस, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
1: जी सामेईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब अपनी पसंद के इजहार से मुतालिक एक मकालमा सुनिए।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
4: सुशी गा स्की देस।
0: और अब मकालमे की तशरीह।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
1: खाने में क्या पसंद है?
0: तबेमोनो खाने की किसी चीज को कहते हैं, और चूंकि ये गुफ्तगू का बुनियादी मौजू है इसलिए इसके साथ हर्फ जार वा लगाया गया है। नानी तो आप पहले भी सीख चुके हैं, इसके मायनी है क्या। नानी गा स्की देस का के मायनी हुए क्या पसंद है।
4: सुशी गा स्की देस,
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी अब दुनिया भर में मशहूर और मकबूल जापानी खाना है।
1: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए।
2: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस, सुशी गा स्की देस।
1: जी सामेईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब कुछ और पसंदीदा चीजें बताने की मशक करते हैं। अगर आपको जे पॉप पसंद है तो ये बात कैसे कहेंगे? जे पॉप का जापानी तलफ्फुज है
2: जे पॉप, जे पॉप।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: जे पॉप गा स्की देस, जे पॉप गा स्की देस।
0: और अगर आपको कॉमिक्स या कार्टून पसंद है तो इसका इजहार कैसे करेंगे? कॉमिक्स की जापानी है
2: मांगा, मांगा।
3: मांगा गा स्की देस, मांगा गा स्की देस।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकाल में से ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
4: होंतो देस ने।
0: होंतो दरअसल होंतो यानी वाकई की मुख्तसर शक्ल है। होंतो देस ने यानी वाकई ऐसा ही है, किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। देस ने का आखिरी ने भी इत्तेफाक करने के लिए ही इस्तेमाल होता है।
1: तो अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: होंतो देस ने,
6: होंतो देस ने,
5: होंतो देस ने।
1: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: होंतो देस ने।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें आयाका और ताम अपनी अपनी पसंद का इजहार करती हैं।
7: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास।
8: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की।
9: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
10: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
9: होंतो देस ने।
11: माइक तो इश्चो नी पॉप कल्चर।
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे।
0: आजकल मुख्तलिफ अकसाम के ऐसे कैफे भी खुल रहे हैं जहाँ खाने पीने के अलावा दीगर दिलचस्पियाँ भी हैं। मकालमे का मकाम कैट कैफे भी ऐसी ही एक मिसाल है। जानवरों वाले कैफे में बिल्लियों के अलावा उल्लुओं या खरगोशों वाले कैफे भी लोगों में मकबूल हैं।
1: जो लोग जापानी बोलने में ज्यादा माहिर नहीं वो भी इन कैफेज में निस्बतन आसानी से दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने वाले तमाम लोगों में ये बात मुश्तरक होती है कि वो जानवरों को पसंद करते हैं।
0: जानवरों वाले कैफे से हटकर और भी कई अकसाम के कैफे पाए जाते हैं। एक किस्म मैड कैफे की है। इनमें घरेलू मुलाजमाओं का मखसूस लिबास पहनी हुई वेट्रेस ग्राहक को गोशुजिन सामा यानी साहब या मालिक कहकर मुखातिब करती हैं। इनके अलावा फुट बाथ कैफे में थकावट दूर करने के लिए पांव नीम गर्म पानी में डालकर बैठते हैं। इसी तरह प्लानिटेरियम कैफे में चाय की चुस्कियां लेते हुए तारों भरे आसमान के मशहूर कुन मंजर से लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
1: यानी जापान में इंतहाई मुख्तलिफ इकसाम के कैफे पाए जाते हैं।
0: जी हाँ, और यकीनन इस फहरिस्त में एनीमे और गेम कैफे भी शामिल हैं।
1: मुझे यकीन है कि सामेईन जापान में अपने मशगले के लिहाज से कैफे जरूर ढूंढ सकेंगे।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के वित्त मंत्री का कहना है कि मंत्रालय ने अमरीकी वित्त मंत्रालय के समन्वय से पिछले सप्ताह जापानी येन खरीदने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। माना जा रहा है कि इस संयुक्त हस्तक्षेप के कारण ही पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा में 5 येन की तीव्र वृद्धि हुई। इस उछाल ने येन को लगभग 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। गौरतलब है कि येन 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया था। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ये कार्रवाई पिछले साल सितंबर में जापान और अमेरिका के वित्त मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप थी। कातायामा ने कहा कि जापान का वित्त मंत्रालय मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अमरीकी वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। भविष्य में समन्वित हस्तक्षेप करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। कातायामा ने आगे कहा कि भविष्य में जापान अपने अमरीकी बंधपत्रों को गिरवी रखकर हस्तक्षेप के लिए आवश्यक डॉलर उधार लेने हेतु फेडरल रिजर्व की सुविधा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका मंत्रालय आगे किसी भी संयुक्त हस्तक्षेप में भाग लेने से नहीं हिचकिचाएगा। बेसेंट ने कहा कि येन के भारी अवमूल्यन को ठीक करने के लिए जापान द्वारा बाजार में अपनाए गए ठोस मौद्रिक उपायों का अमरीकी वित्त मंत्रालय दृढ़ता से समर्थन करता है। 2011 के बाद ये जापान और अमरीका का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप था। उस समय पूर्वोत्तर जापान में आए महाभूकंप और सुनामी के बाद येन के मूल्य में उछाल आने के चलते अधिकारियों ने येन को बेच दिया था। हालांकि 1998 के बाद येन को सहारा देने के लिए ये पहला संयुक्त हस्तक्षेप है जब जापान के कुछ बैंक डूब गए थे। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सोमवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इस क्षेत्र में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। कुमामोतो शहर में दोपहर 2:24 पर अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कुमामोतो प्रीफेक्चर में इससे पहले का उच्चतम तापमान 39.6 डिग्री था, जो अगस्त 2013 में दर्ज किया गया था। एजेंसी लोगों से तापघात से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, जिसमें घर के बाहर साफ सफाई करने से बचना और दिन के दौरान ठंडी जगह पर रहना शामिल है। भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि के बीच मौसम विज्ञान एजेंसी लोगों से मंगलवार तक जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 तक की तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रही है। कुमामोतो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक प्रीफेक्चर में आपदा से संबंधित 38 मौतें हो चुकी थीं। 4,600 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 181 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। प्रीफेक्चर में 8,500 से अधिक लोगों को आपात आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने की योजना रद्द करने की घोषणा की है, जिसके बावजूद ईरान का कड़ा रुख बरकरार है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सप्ताहांत में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वे कुछ शर्तों के साथ इसे रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वो हमला रद्द कर दे, क्योंकि समझौते के खाके पर सहमति हो गई है। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलने तथा ईरान की ओर से उत्पन्न परमाणु खतरे को समाप्त करने की शर्त रखी गई है। ट्रंप ने लिखा कि अनुरोध के आधार पर वे जल्द से जल्द समझौता होने की स्थिति में हमला रद्द करने पर सहमत हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को ईरान के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि दुश्मन के हालिया बयान भले ही मनोवैज्ञानिक दांवपेच हैं, लेकिन ईरान उन्हें वास्तविक और गंभीर खतरा मानता है। अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ईरान लापरवाही नहीं बरतेगा और न ही चुपचाप बैठा रहेगा, बल्कि वो अपनी सैन्य तत्परता बढ़ाते हुए प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्वोत्तरी जलक्षेत्र में एक नौका में आग लगने की खबर है। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 41 अन्य लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग रविवार को उस समय लगी जब ये नौका पूर्वी जावा प्रांत के मादुरा द्वीप के निकट से गुजर रही थी। एजेंसी के अनुसार ये नौका पूर्वी जावा के सुराबाया से साउथ सुलावेसी प्रांत के मकासर जा रही थी और उस पर 271 लोग सवार थे। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जापान के सुप्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन उत्सवों में से एक नेबुता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नेबुता महोत्सव में जापान के उत्तरी शहर आओमोरी में भव्य झांकियों की परेड निकाली जाती है। इस महोत्सव में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख दर्शक आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण नेबुता नामक विशाल झांकियां हैं। इनमें ऐतिहासिक योद्धाओं, पौराणिक पात्रों और अन्य विषयों को दर्शाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव के पहले दिन रविवार शाम 7 बजे 16 झांकियों ने परेड शुरू की, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। ये झांकियां ढोल और बांसुरी की धुन पर करीब 3 किलोमीटर तक चलीं। उत्साही नर्तकों की भीड़ ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। 40 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला ने कहा कि वो पहली बार इस उत्सव को देखकर बेहद उत्साहित है। उसने कहा कि उसने झांकियों के निर्माण में नेबुता शिल्पकारों द्वारा किए गए साल भर के प्रयासों में निहित उत्साह को महसूस किया। ये उत्सव शुक्रवार तक चलेगा। अंतिम दिन दर्शक आतिशबाजी और समुद्री झांकियों का जुलूस एक साथ देख सकते हैं।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।